0: FM 101.3.
1: एसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: शुल्कं प्रवर्तिष्यते। लद्दाखः भारतस्य अभिन्नमङ्गं, चीनस्य प्रत्याख्यानेन न परिवर्तते यथार्थमिति नवदिल्ल्याः दृढप्रतिपादनम्। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण 2000 षड्विंशतिः सप्तविंशतिः वर्षाय भारतस्य आर्थिक विकासानुपातः 7% यावत् वर्धितः। अपि च अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट समित्या सितम्बर मासस्य मासोत्कृष्ट क्रीडक पुरस्काराय शेफाली वर्मा, शुभमन गिल इत्येतौ चितौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् केन्द्र सर्वकारेण स्वकीये शासन दृष्टिकोणे कार्य संस्कृतौ च सशक्तिकरणाय सामर्थ्यम् इति सिद्धान्तः अंगीकृतः। नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फॉर्म इति आर्थिक मञ्चं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् जागतिक अनिश्चिततानां मध्येऽपि भारतस्य आर्थिक प्रगतिः अतीव दृढावस्थायाम् अग्रेसरा वर्तते। सः अवोचत् यत् भारतस्य विकासः सामूहिक प्रगतौ सहभाग्यवसरेषु च आधारितः अस्ति। प्रधानमन्त्री अग्रे अवदत् यत् सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासः अस्ति यत् भारतस्य सामर्थ्यं विश्वस्य अन्यदेशेभ्यः अपि अवसराणां नूतनद्वाराणि उद्घाटयेत्। सः अवोचत् यत् सामर्थ्यं केवलम् अग्रे गमनस्य क्षमता नास्ति, अपि तु अन्येषां सशक्तीकरणस्य क्षमता वर्तते। श्रीमोदिना उक्तं यत् वर्तमाने युगे अंकीयशक्तिः अस्य रूपान्तरणस्य प्रमुख चालकरूपेण उदिता, या अस्य दृष्टिकोणस्य विस्तारे महतीं भूमिकां निर्वहति, यथ च भारते विपुलान् अवसरान् सृजति।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस है। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स है। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् यदा कदापि विश्वस्मै स्थिरस्तम्भस्य आवश्यकता भवति तदा भारतं स्वदायित्वम् अनुभूय साहाय्यहस्तं प्रसारयति। श्रीमोदिना सूचितं यत् अद्य भारते 2000+ वैश्विक क्षमता केन्द्राणि सन्ति, यानि सम्पूर्णविश्वस्य वाणिज्यिक संस्थाभ्यः सेवाः प्रयच्छन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति, यत्र शतसंख्याधिकाः भाषाः, प्रायः 80,000 पञ्जीकृतानि समाचारपत्राणि प्रकाशनानि च, 1,000+ च उपग्रह दूरदर्शनवाहिन्यः सन्ति। श्रीमोदिना विशेषतया प्रतिपादितं यत् विगते दशके भारतेन 25 कोटि जनाः निर्धनरेखातः बहिः निष्कासिताः।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते 1 दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: नवदिल्ल्यां बंगालोपत्यका बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगोपक्रमस्य प्रथम गृहमन्त्री सम्मेलनं भारतस्य आतिथ्ये सम्पद्यते। इदम् ऐतिहासिकं सम्मेलनं आतंकवादस्य, पारदेशीय संगठित अपराधानां, मादक द्रव्य तस्कर जालस्य, मतान्धतायाः, मानव दुर्व्यापारस्य, अवैध वित्तीय प्रवाहाणाम् अथ च साइबर आह्वानानां सम्मुखीकरणाय सामूहिक संकल्पं दृढयति। अत्रावसरे भाषमाणः गृहमन्त्री अमितशाहः अवोचत् यत् बीमस्टेक संगठनं क्षेत्रीय एकीकरणाय, आर्थिक सहयोगाय अथ च सामूहिक सुरक्षायै प्रमुखमञ्चत्वेन उदितमस्ति। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं वसुधैव कुटुम्बकम् इति उदात्तदर्शनेन प्रेरितं सत् सदैव विश्वशान्तये मानवकल्याणाय च प्रतिबद्धं वर्तते। आतंकवादं प्रति भारतस्य असहिष्णुतायाः नीतिं प्रतिपादयन् गृहमन्त्री सामूहिक प्रतिबद्धतायै आह्वानम् अकरोत्। अस्मिन् संपूर्ण क्षेत्रे कस्मै अपि आतंकवादी

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's address at Bloomberg New Economy Forum. The participants are Deepshikha Sikarwar, economic analyst, and Shreya Pathak, anchor.
1: Hello and welcome to Spotlight. Prime Minister Narendra Modi addressing the 8th Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today has highlighted the vision of power to empower. He emphasized that technological progress should benefit every section of society, not just a privileged few. Before moving any further, let's listen to what PM said.
2: Desh ke nagrik ki suvidha badi hai, government aur citizen ke beech seedha rasta bana hai. साथियों, पावर टू एम्पावर की यही सोच भारत की ग्लोबल एंगेजमेंट में भी दिखाई देती है. कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा महत्व था. तब सवाल था कि क्या इस ताकत का फायदा भी कुछ ही देशों तक सीमित रह जाएगा, या फिर जिनके पास ये सुविधा और ये सामर्थ्य नहीं है उन देशों उन लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी. भारत ने मानवता को एम्पावर करने वाला रास्ता चुना. हमने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की. हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दूसरे देशों के लिए भी सहायता का माध्यम बनी.
1: टू अंडरस्टैंड हाउ दिस विजन कैन शेप इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, वी आर जॉइंड बाय दीपशिखा सिकरवार, इकोनॉमिक एनालिस्ट. वेलकम टू स्पॉटलाइट दीपशिखा मैम.
3: थैंक यू श्रेया.
1: Today only, Deepshikha ma'am, the Prime Minister spoke about something worth remembering. He said power to empower. What in your opinion could this vision actually mean for India's economy?
3: Shreya, if you listen to what Prime Minister said at the Bloomberg New Economy Forum in National Capital today, two very important statements that really stand out. One, of course, like you mentioned, power to empower. I think what the Prime Minister is talking about is you attain power, but that has to be to empower others, and which has been something, the underlying philosophy behind whatever initiative.